0: అమ్మా మా ఫార్చూని అయ్యి
1: వాడరికి ఆర్చెస్
2: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी शहरमा यही साउन एक गते शुक्रबारदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र गौथली
3: तिमीले पढ्न आउँछ माया गर्छु भन्नेलाई के भन्छ अंग्रेजीमा
4: बनाना आई लव यू
2: समय मध्याह्न 12 बजे दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे।

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ्गी एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: शल्य क्रिया सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक द्वारा उपचार, छार सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को सुविधा, दैनिक ओपीडी तथा शल्य क्रिया सेवा,
1: रोग लुकाएर नराखौ समयमै परीक्षण गरौ।
0: थप जानकारी का लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौं, फोन 01-4110-6690, 4110-6690।
2: स्वस्थ जीवन का लागि आयुर्वेद अपनाऊ।

0: ব্যাংকিং খেমত বিলি চি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ গোপে বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম ক্যারে নিও দেপ্রে ছালি জানকারী রি বিষয়া নিও কল কর দিমো সময় নিও ঠকদিল খামো ব্যাংকর বে কর্মচারী বীরা নিও দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংকি নীল পর দিমো নিও তানি সতর্ক তানা ঠদরে ক্যা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাংকর ক্যালে জনহিতারী জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদাই ভরিলাই
2: यो मोबाइलले पनि तनावै दियो भन्या
3: हैन के तनाव दियो ए खुशी
2: हेर न अस्ति भक्खर बनाएर ल्याएको फेरि बिग्रियो हैन मर्मत गर्ने गतिलो पसल कतै छैन
3: छ नि किन नहुनु हाम्रै बेसी शहरको पुरानो बैंक चोक नजिकै रहेको जनता मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मोबाइल मर्मत गरिन्छ नि
4: हामी कहाँ सामसुङ रेडमी भिभो टेक्नो ओप्पो नार्जो रियलमी लगायतका ब्रान्डेड मोबाइल सेटहरू पाइनुका साथै बिग्रिएका जुनसुकै ब्रान्डका मोबाइलहरू दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मर्मत गरिन्छ साथमा इलेक्ट्रिक सामानहरू पनि उपलब्ध छ
3: प्रोप्राइटर शम्सुल आलम जनता मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स पसल बिक्री तथा मर्मत केन्द्र बेसीसार नगरपालिका साथ पुरानो ब्याङ्क चोक रोशन फेस हाउस सँगै लमजुङ थप जानकारीको लागि सम्पर्क 9845

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्सेन्जी एफएम 95 मेगाहर्ज
1: समिति हो चौदा के में बोधे लोटी पर दी रो बहले ने विवरण पी भी है मुई खाता दिखे हमरो
2: खै खै बहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
3: आंगी समझ जो लोटी पर दी हूँ छांता ही गुदी
2: बढ़ दी आप बढ़ दी लोटर खाले पर दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खै विषय खै मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खै मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्था कोई पासवर्ड पिन खै मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
4: सतर्क
3: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
5: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
6: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ
7: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: सुन्दर मनमोहक र आकर्षक गरगहनाको लागि विगत चार दशकदेखि सेवारत अमृत सुनचाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी शहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी शहर
1: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनका गरगहना
0: हार मंगलसूत्र छड्के तिलहरी मिनी तिलहरी औठी सिक्री टप झुम्का चुरी टिकिया चन्द्रमा किलिप पंखे चन्द्रमा विभिन्न किसिमका जन्तर लगायतका सम्पूर्ण गरगहना
1: सुनचाँदी खरिद बिक्री र पुराना गरगहना साटफेरका लागि अमृत सुनचाँदी पसल
0: रेडीमेड एवं अर्डर अनुसारका आधुनिक र परम्परागत आकर्षक गरगहना
1: चाँदीका सामान र राशि अनुसारका पत्थरका लागि
0: अमृत सुनचाँदी पसल तथा हस्तकला उद्योग बेसी शहर नगरपालिका साथ त्रिवेणी टोल बेसी शहर प्रोप्राइटर रविलाल विश्वकर्मा अमृत विश्वकर्मा फोन 0665520152
1: मोबाइल 97460054
0: शुद्धता र विश्वसनीयता हाम्रो प्रतिबद्धता
2: पशु पंक्षी का लागि चाहिने दाना अब विशेष छूट सँगै बुलाकी सप्लायर्समा उन्नत जात का ब्रोइलर र गिरिराज कुखुरा का चल्ला गाई भैंसी तथा कुखुरा का लागि चाहिने पोषणयुक्त दाना विशेष छूट का साथ चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस् बुलाकी फ्रेश हाउस बेसी शहर नगरपालिका 813 लमजुङ प्रोप्राइटर गुणराज सिलवाल थप जानकारी को लागि सम्पर्क मोबाइल 9856281186 फोन 0665520293 साथै नमूना फ्रेश हाउस मनाङ्गे चौतारामा पनि पाइन्छ

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: चार चाहिँ तली लागपर्दी समलल पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बढेर ब्लक तयाई भिसा आफै न ब्याङ्क दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।